0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Maa

मूर्ख मुग्धा जन्म भया प्रणवत नानक तन की शरणा जन तू नाही विसरया। आस्था महला महला आस्था महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरा एक तैना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजा मिलाग भव जल तरन कै जन्म मृथा जात रंग माया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जान्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो ब्रत पारा।

कर्ण का आज संग रहे हैं। पूर्ण हो हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम दे पाऊं। सेवक से कह मारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ द मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास में भरे आए। हु जो सदा हमारे पछा, सरिया तुझू करे हो रक्षा, राख ले हो मुह रखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दर्शन के हंता, तुमहो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोबद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद बेद यार आलम।

अज वेद न जानत। महादेव कौ कह सदा सेव, निरंकार का जीवन रह भैव। आप अपनी बुद्ध है जिन जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसार, केहे विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तिज कीनी, पुत पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवा बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुयम पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संग्रो। दोष जिते उठवत पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होई ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जह निहरिहो, ताके ताप तन कमो हरिहो। रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शास वह सके न कोई। एक बार जिन तुम संभार, काल वास्ते ताहीं उभार। जेन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख देह। खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दलिहु उभारी। सर्ब ठावर मोह हो सहाई, दुष्ट दोग ते लिहु बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। सरियस बान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तो बखान्यो। दोहरा सगल

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज से ती मन बजियां बधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया, शब्द ता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

आनंद सुनो बड़ भागी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सकल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित

आया अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खुआया गुरमुख बिरले सो जी पाई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया।

कहो जन क्यों ध्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है। जिस

पुत्रो सोपारी शाह पातशाही आहू को परो सो है कुटुंबी करे काज कर आहू को परो सो देववाणी अर पार की कर आहू को परो सो संत।

ऐ भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वसिया घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस हुए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी तिन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरतारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औगावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सलाही बिच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखोट सच्चे पंडारी अपने भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किस है किसका आखन बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पौ जल पार उतारी बिन हर साचे को पार न पावे बूझे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईए शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी।

आई। नानक सुन वेख रहया विस्माद, मेरा प्रभ रविया सर्ब थाई। राम कली महला पंजवा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विसथारा। किन्हीं निवल पोयंगम साधे, मोहे दीन हर हर अरादे। तेरा भरोसा प्यारे, आन ना जाना वेसा रहाओ। किन्हीं ग्रह तज वन खंड पाया, किन्हीं मोन अवतूत सदाया। कोई कहतो अनन भगौती, मोहे दीन हर हर ओट लेती। किन्हीं कहया हऊं तीर्थवासी, कोई अन तज भया उदासी। किन्हीं भवन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हीं कहया मैं कुलह वड्याई, किन्हीं कहया बाहां बहु भाई। कोई कह मैं तनह पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किन्हीं कुंगर निर्तक राई, किन्हूं वर्त नेम माला पाई। किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया। किन्हीं सिद्ध बहु चेतक लाए, किन्हीं पेख बहु थाट बनाए। किन्हीं तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतुर कहावे पंडत, को खाट कर्म सहत स्यो मंडत। कोई करे अचार सुकरनी, मोहे दीन हर हर हर सरनी। अगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नाम एह माना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महासी।

ये प्रात पुत हारी जिन दिए तुद बनता अर मीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवने अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना छत्ती अमृत जिन भोजन दिए अंतर थान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना देखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन को सिर कीनो मेरा मन तिस ठाकुर के पूजो पैरा अपवित्र पवित्र जिन तू करया सगल जोन मह तू सिर धरया अब तू सीज पावे नहीं सीजै कार्य सबरे मन प्राप्ति आईजै इहां उहां एकै ओही जत कत देखिए तत तत तोही तिस सेवत मन

ग्रह आवत कंत लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत हुए आनंद गूंगा भक्त गावे बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यो पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यो साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम भउ खोत ज्यो चकवी सूरज की आस ज्यो चात्रिक बूंद की प्यास ज्यो क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत।

खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत कहन न जाई संत हो, चरण कमल सिओ लागो ध्याना, साचै दर्श समाई संत हो, गुण गावत गावत पए निहाला, हर सिमरत तृप्त अगाई संत हो, आत्म राम रविया सब अंतर, कत आवै कत जाई संत हो, आदि जुगादी है पी होसी, सब जिया का सुखदाई संत हो, आप बेअंत अंत नहीं पाई है, पूर रहे सब ठाई संत हो, मीत साजन माल जो बन सुत, हर नानक बाप मेरी माई संत हो, राम कली महला पंजवा, मन बच क्रम राम नाम चितारी, कुमन घेर महा अत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ, अंतर सूखा बाहर सूखा, हर जप मलन भये दुसतारी, जिसते लागे तिन्ह निवारी, प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी, उदरे संत परे हर सरनी, पच बिन से महा अहंकारी, साधु संगत एहो फल पाया, एक केवल नाम आधारी, ना कोई सूर ना कोई हीना, सब प्रगति जोत तुम्हारी, तुम समर्थ अकथ अगोचर, रविया एक मरारी, कीमत कौन करे तेरी करते, प्रभ अंत ना पारा वारी, नाम दान नानक वडियाई, तेरे संत जनारे नारी, राम

मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सीती, मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आईया, शब्दों तंगा वो हरी केरा, मान जिन्नी वसा।

राम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।

संत हो शब्द तरहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै कर सा भागै शब्द वाजी कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ए नाम हर कै लागी कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजी साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजू क्या करे विचारिया तुद बाज समरथ कोई नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

सुर नर मुन जाने अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख पर सुन आया लभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुथा इन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगतहा केरी विखव मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना थन्यो हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वास ना समाणी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली।

अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे एहो सोहिला शब्द सहावा शब्द सहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहों लिखिया आया एक फिर है कनेरे करह गल्ला गली किनै ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कितंब सहत सियो पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिन्नी मन वसाया कह नानक से पवित जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया।

लीन है कित संयम तोता जाय मन तो वोहो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे एहो सहसा इव जाय जियो मैले बाहर हो निर्मल जियो ता मैले तिन्नी जन्म जू है हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा।

बिन सत गुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होर थै कोई, कुछ हो बेकिया जाय, अनेक जूनी भरम आवे, बिन सत गुर मुक्त ना पाई, फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाई, कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाई, आव

आई हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्ले पाई हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर तेरा सुजानी हर हर रित जपे हो जियो लाहा कटे हो दिहाड़ी एहो तन तिना मिल।

रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होत किते जिचर हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिले जित आई कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसे मन आई ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो।

शरणी पावन नाम ते आवन सहज समावन संग राव जन के चरण वसह मेरहि अरै संग पुनीता देहि जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखै जन के चरण वसह मेरहि अरै संग पुनीता देहि जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखै वाहिगुरु जी का खालसा।

बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए रखिया रहा। जात में जो जोत में जाता अकल कला पर भू रहा तू सच्चा साहिब सिर्फ वाले जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो

0: मनिंदा नो सुजान पौड़ी साहेब हुए दयाल
1: कृपा करे तसाई
0: करे जिसनो हुक्म बनाए सी।

पाउड़ी वडे किया वडे आया कुछ कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जी आज सुबह।

नानक गुरमुख परमंगत पाई, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक बिगन जह आए संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनक जहुन जन में मर जानू, नाम जपत पावे विश्राम, हौं मैला मलक भुन धोवे, हर का नाम कोट पाप गोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कैसा।

मन तुझिया करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै। भगत जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन खोट। हर जस करत संत दिन रात हर हर औकत साध कुमात। हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै बिरत दबे कै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि वियोग। जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा।

नौखंड पृथ्वी फिर चिर जीव महा उदास पतिसर पीव अदन माह होमत परान कनक अस्व है वर धूम दान न्योली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संजमे अपसाधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो पीहो मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कठिनाई नान।

जागै अंतर दसै प्रव्याप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, करगै देह ओर निधावे। कहां बुझारत दूजै डोरा, निष्कहिए तो समझै पूरा। कहां विष्ण पद गावे गुंग, जतन करे तो पीसल भंग। है पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं होत उहां उस गवन। करतार करना में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई तो आवे न कीत, जो बहराई तस्य प्रीत। बलुआ के गृह भीतर बसै, अनंत तेल माया रंग रसै। दृढ़ कर मन मने प्रतीत, पाल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महान लोभ त्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले अपन कर कर्म। तूठा कर तुम पैर दास, जियो पिन सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे, तुमरी कृपा में सुख धनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते

लाई मिथ्या तान तान कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज योगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ति अक्षव बत्रा मिथ्या रंग संग माया पी खस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपसी ऊपर कृत गुमान अक्षर भगत साध की चरण नानक जब जब जीव हर की चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प कौहिरे मिथ्या नेत्र तेक्ष पर त्रय रूपाद मिथ्या रचना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कौतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या भास लेत लिखारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नान हर हर नाम ले बिरथी ताकत की यार जा साथ बिना कह होगत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत तन कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन मृत्यु सब काम ज्यो कृपन के निरार दाम तन तन तेजन जे खट बस्यो हर नाओ नानक तन जय बल बल जाओ रह प्यवर कछ्यवर कुमार।

जीवत परी जे प्रसाद क्षति अमृत खा है ठाकुर कौरक मन माही। जे प्रसाद सुगंध रतन लावे तिस को सिमरत संगत पावे। जे प्रसाद बचे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह सिंह सुख रचना आठ पहर सिमरो तिस रचना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ बटंबर हटावे तिसे त्याग का पेवर लुभावे। जे प्रसाद सुख तेज सुई जय मन आठ पहर संका जस गावी जय। जे प्रसाद तुझ सब को माने मुक्ता को जटन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता तरम मन सदा त्याय केवल पारदम। प्रभ जी जप दरगह मान पावे नानक पत्ते ती कर जावे। जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लाओ तुझ राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन का साथ सिमरो प्रभु उचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी पल।

जी बचना जय प्रसाद हस्त कर चलै जय प्रसाद पूर्ण पलै जय प्रसाद परम पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रसाद अवर कट लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस सब को मूल न मनो निसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मोर तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज।

0: संग नानक प्रसो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत
1: साध संग किस सुनि बैर साध कै संग न बिगा पैर
0: साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध कै संग न कभ हुंसावे साध कै संग सदा सुख पावे साध संग बस गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध कै संग बस

जिस संते सबको बरसावे। साध संग परम राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम।

मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखे एक बिन को नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अले, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लोक जैसे सूर सर्व कौस्तुभ, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे।

ब्रह्म ज्ञानी सगल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एक कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम प्रवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध दयागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी कै हुई अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन।

है भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग मन से बिनस सगला परम कर पूजा सगल पारम साध संग पापा मल खो है भगवती की मत युतम हो भगवंत की टहल करे नितनीत मन तनर्थ है विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोध है राम नाम या तुम मैं शोध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित का उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित।

आवै तैसा हर तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा अमृत तैसी बिघाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो व्रता स्थाई जुगत नानक को पुरख दे जी।

आका लेखा नागनय जगदीश जियो पिन सब किसकी रास कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बन आप बनाई नानक जी वह देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई कुंतियो कभू ऊंच नीच में बसे कभू सो हरत रंग हसे कभू निंद चिंद व्यवहार कभू ओबा का

प्रक्रियास फल पितरता का हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्मराय तिस्करे खुआरी। गुरु प्रसाद जा का

चै पावे अनक भोग दिखया के करे न दृढ़तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं पूरा जय स्वप्न मनोरथ बिरथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़पागी किसे प्राप्त होए करन करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप।

सच सच सब कीना कोट में देख न बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घाट घाट सुनी।

नीच निचाए संत दुखी का थाव को नाही। नानक संत पावै ता कोई भी गत पाए। संत का निंदक महायत ताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई।

संत के दुख ना सुखे तरह, संत के दुखी को नहीं थाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दुखी अध बीज ते टूटे, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचे। संत के दुखी को उद्यान परमाई है, संत का दुखी उज्जड़ पाई है। संत

आज्ञाकारी कार्य संश्लिष्ट आपे आप सगल में आप अंत जुगत रच थापो थाप अबनासी नाही किछ खंड धारण धार रहे ब्रह्मंड सलाखय पेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदरे तिन मंत।

जिसना कृपा करे बुढ़ पागे, नाम जब पावे विश्राम। नानक किन पुरख को उत्तम करमान, जो कुछ करे सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग।

गर्भ जन सब किस किसका दिया दर्द है। अत सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता वह जे को हुई वह दातार किस दिन हार जाने गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक तो जन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मनाये समन ज्यो पाखान नाव चढ़त रहे प्राणी गुर चरण लगन सराय ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बात चौसूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख का ही दिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है

सो जन निर्मल किया, जाके मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रतीत। भगत भगत सुनिए तेलोए, जाके हृदय कुसोए, सच करनी सच्चा की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृढ़ साचा आकार, सच वर्त है साचा पासार, पार ब्रह्म।

सर्वथोक्ष्मीय कर्तक है। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपी, सर विश्व में भोगी। ध्याय ध्याय पलते सुख पाया, नानक के पुरख का किनई अंत न पाया। जाति लीला की मित नाह, सगल देव हारे अवगाह। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल करो ही अपने सूत। सो मत ज्ञान ध्यान जिंदे, जनदास नाम से आवैसे। ते गुण में जाको फरमाई, जन्म मरे फिर आवै जाए। पूछ नीच किसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाति रंग, नाना पेख करे एक रंग। नाना विद नाना विद कीनो विस्तार, प्रभ अबनाती एक संसार। नाना जल्द करे खिन माही, पूर रहे पूर्ण सब ठाई। नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीन से आपे पाई। सब कर किसके सब किसके ठाओ, जप जप जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड।

बिस्मन बिस्म तहि बिस्माद जिन भूजत आया स्वाद तब कह रंग रात जन रहे गुर कह बचन पदार्थ लहे कोई दाते दुख काटन हार जा कह संग तरह संसार जन का सेवक सोबड़ पागी जन कह संग एक लिग लागी।

ठाकर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे ननकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु थारे, नानक सो सेवक सास सास सुमारे। अपने जन का पर्दा ठाके, अपने सेवक की सर पर राखे। अपने दास को देव बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पत्र रखे, ताकि गत में कोई न लखे।

है पी अमृत ए मंत्र पी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किस अवर नाही दिसाया नाम तन नाम रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जनता ने मंत्र नाम सुनाने उठत बैठत सोत नाम कौ नानक जन कै सद काम।

गुरबचनी हर नाम उचरै, सतगुरु सिख के बंधन काटै, गुरु का सिख विकार से हटै। सतगुरु सिख का नाम तंदे, गुरु का सिख बड़ भागी है। सतगुरु सिख का

पार नानक ठाकर अग्न पार। अबनासी सुखे अपने आसन है जन्म मरण कहो कहां बिनासन। जब पूर्ण करता ब्रह्म सोए सब जन की चास कहो किसोए। जब अवगत अगोचर प्रवीण का तब चित्र गुप्त किस पूछ लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपने आप ही ये चर्जा नानक आप नरो आप ही उपरजा। जय निर्मल पुरख पथ होता तह बिन महल कहो क्या तोता। जय रंजन रंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदी तह चल छिद्र लग कौ की। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन तृतावे। कर्म करावन करने हार नानक करते का न सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र कुत पाई।

देव हृदय बसारो मन इच्छे नानक कल्पारो। हालत पलत दोइले सवार राम नाम यंत्र उधार। पूरे गुर की पूरी जिक्या जिस मन बसै तिस साच प्रीतिया। मंत्र नाम जपो लिवलाए।

सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुने सुख बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिंदाता तिसकी यही रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्म कराव नहार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर की ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत की सब सत।

मिलाए। कवन निकट कवन कही ऐसूर, आपके आप आप भरपूर। अंतर्गत जिसे आप बिनाए, नानक किस जने आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्त।

सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय सब देना हदवा जय, सुन सुन आनंद करे सब गा जय। प्रगटे गोपाल महांत कह माथे, नानक कुदरे तिन कह साथे। करन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रव्याप मिलाए। मिट गए बहर भय सबरीन, अमृत नाम साध संग लें। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव।

सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट कर लोए सब।

पान सकले समझे झिझकी ना खावे तू जिधर में चल दी तेरी मुड़ दी शमशेर नहीं दुनिया तेरे वर्गा

0: अमृतसर वल्ले चलो सूर्यो चलिए अमृतसर वल्ले
1: ओ सब हराम है असाला पीड़ा तो खाला जिन्ना तिर दरबार ते हावर ते अपहारा जिन्ना तिर दरबार ते हावर ते

0: अमृत सारे बल्ले, चलो सूर्यो चलिए अमृत सारे बल्ले।
1: हो मल मोर के भाग जो खान मंडी, उस दे सिर ते खड़कानी मर्दां दी चंडी। हो उस दे

0: चलिए अमृत सारे वल्ले, चलो सूर्यो चलिए अमृत सारे वल्ले।
1: ओ सिंगा तो भज गए जावण गए किद्दड़े, शेरा मूरे गज दे होने आके गिद्दड़ा, शेरा मूरे

0: चल लिए अमृत सारे वल्ले, चलो सूर्य चल लिए अमृत सारे वल्ले।
1: हो पुर्जा पुर्जा हो जाइए नई शीश नवाला, थोड़े दिन भावे जी लिए अलखा नाल जाना, थोड़े दिन भावे जी लिए

0: अमृत सारे वल्ले चलो सूर्यो चलिए अमृत सारे वल्ले
1: ओ छड़ो आस जीवन नी मर जाइए लड़के कौन सिद्धू गाने गे संगत विच करके संधू सिंघेड़ा गाने गे संगत विच

0: अमृत सरोवर चलो सूर्य चलिए अमृत सरोवर।
1: बाबा दीप सिंह ने समुची कौम नू वंगार दिती, ललकार दिती, ते समुचा जेड़ा मालवा खेतर सी इहदे विचों हजारां दी तादाद दे विच सतगुरु महाराज हित सतगुरु महाराज जी दे पावन स्थानां लई कुरबानी करन वास्ते जिहड़े घरां तों जिहड़े नित दी कार विच जुड़े होए सिख सन उह बाबा जी दे चरणां विच इकट्ठे होणे शुरू हो गए। क्योंकि सिख जिहड़ा है इह जमांदरू संत सिपाही है, इहनूं सतगुरु महाराज जी ने इस ढंग नाल साजिया है भाई जदों इह संसार विच विचरदा है ते इहदा संत सरूप चेहरा है, जदों अपनी किरत विरत की गल करदा है ते इहदा मन जिहड़ा है संती रूप दे विच किरत नाल जुड़िया हुंदा है, पर जदों इहदी अणख नूं कोई जगाउण दा जतन करदा है फिर ये ओही हथ जिहड़े ने जिहड़े बागां दीआं कैंचियां विच कम करदे ने, हलां दीआं जंगियां ते कम करदे ने, तलवारां दीआं मुठ्ठां उत्ते चले जांदे ने। एक काजी नूर मुहम्मद होया, उहने सिखां दी सिफत दे विच बहुत वड्डा विरोधी सी सिखां दा, उहने चार लाइनां बड़ियां सुंदर लिखियां ने। उह कहिंदा मुर्शिद इनका वली भयो है, इनको आबे हज़ात दियो है, गजब असर तिसका हम देखा, बुझ दिल होवत छेर बसेखा, कान न काहूं किए राकत, शैन शाह खुद ही को भाकत, और सबन को जीव चरासी, भाकत आप ताको अबनासी। आंदा ये दुनिया के लोगों चौरासी लख दे आवागौन आने वाले जीव समझते ने, अपने आप नू अबनासी समझते ने। आंदा पंचो त्यार किए, पंचो ही जेर कीने, पंचो पढ़ी थी बाणी, पंचो दिए ककारा, आबे हजार जिसके मतल सी था सिकंदर, जो इम्तहा में आए अखिल उनको पलारा, तकसीर इस दुआ की अकसीरें ऐसी आई, मुर्दियों पे जान आई चिड़ियों ने बाज मारा, मुर्दियों पे जान आई चिड़ियों ने बाज मारा। ऐसी कौम जिड़ी अपने हकां उत्ते मर मिटन वाली होवे, उहदे धर्म मंदर उत्ते कोई हमला कर दे ते इस तों वड्डा उहदे वास्ते की दुख हो सकदा है। जदों श्री हरिमंदर साहब दे उत्ते हमला किया गया ते दुनिया दे चार चफेरियों घरां तों जिहड़ियां संगतां सन वहीरां कट के दरियावां नूं तर तर के पार करके श्री हरिमंदर साहब वल पहुंचणियां शुरू होईयां, सिख फौजियां ने बैरकां छड्डियां, अपनियां नौकरियां छड्ड के अपने धर्म बदले, अपने इस पावन पवित्र

अपने जन को दे वड्याई, अपने जन को दे वड्याई मेरे गोबिंद, अपने जन को दे वड्याई, अपने जन को दे वड्याई

चरण कमल मेरे हियरे बसे, चरण कमल मेरे हियरे बसे, तेरी भगत न छोड़ूं पाम लोग हसे, पाम लोग हसे।

तेरी भगत न छोड़ो, हमें लोक हंसे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सजस पूर रखो, मन सो मद

गोबिंद स्यों जिन घट मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घट चरण कमल मेरे हियरे बसे

भजे खुदाए। चरण कमल मेरे अरे बसे, तेरी भगत न छोड़ो भावें लोक हसे। छोड़ राम की न

चरण कमल में रहिए रहे बसे, तेरी भगत न छोड़ो पाम लोक हसे, पाम लोक हसे।

करे गजेंद सुंड की चोट ना माय भरे हर कियो। ए नाम जपन वाले नु सजा मिल रही, पहरों श्री नामदेव जीओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर जीवंदी जागदी एग्जाम्पल है, दलील है। कहते दुनिया इधर दी इधर हो जा, पर हे परमात्मा तेरा नाम इन्ना प्यार है, तेरे नाम नाल इन्ना मैं प्यार किता, कदे नहीं छड़ांगे, कदे नहीं छड़ांगे। शब्द बसंत राग दा भगत नामदेव जी कहंदे जे साहिब ते संकट आ जावे। शब्द देखियो, शब्द दे शब्दार्थ आप जी दे सामने ने अर्थ, पर इन्हां दे गहरे भाव भी आप जी दे सामने रखे जाने। साहेब संकट वे सेवक भजे, इत्थे भजे नहीं कहना, भजे कहेगा तो सिमरन हो जाएगा, भजना सिमरन करना, भजे तो भावे दौड़ जाना। जे किते मालक ते संकट पै जा, मालक मुसीबत विच आ जाए तो सेवक भज जाए, ते कहंदे किन्ना चिर जीवेगा। पहले नंबर ते ते अज दे समयां दे विच वी ते पुराने समयां दे विच उन्हां समयां दी गल वी है, अज समय दी गल वी है। एक दल छड के दूजे दल च जाओ ना ते दुश्मन हो जांदा दूजा दल, जिहड़ा दल छड्डिया जांदा फिर लभदे फिरदे ने कदों ए मिले ते मारिया जावे। गैंगवार इस तरह ही हुंदे ते दुनिया दे अंदर खून दियां नदियां वग जांदियां। भगत नामदेव कहंदे ए तां कोई स्वाद ना होया कि साहिब ते संकट आ जावे सेवक दर छड़ के दौड़ जाए। सेवक की परख तो उदों ही होंदी है जो मालिक ते आके संकट पवे। सेवक कहे पहला मैं पीड़िया जावा मालिक, तेरे उपर बात ना आवे। साडी मौत अखां नाल वेख ली पर तेरे उपर संकट आना असी पसंद नहीं करते। असी तेरे उपर आए हुए संकट नू हर असंभव बात नू संभव कर देवांगे। ते भगत नामदेव कहंदे जे छड के दौड़ भी जावे किन्ना चिर जीवेगा, चिरंकाल ना जीवे, बहुता समा नहीं जीवेगा, मारिया जाएगा। बल्कि दोवां कुल्लां नू लज्जिया आएगी, फलाने दा पुत्र फलाने दा पोतरा, दो कुल्लां नू फलाने दा पोतरा फलाने दा दोतरा, नानके ते दादके शर्मिंदे होणगे। चिरंकाल ना जीवे दो कुल लजे। ते भगत नामदेव कहंदे मैं इस तरीके नाल रब तेरा नाम नहीं छड़ना है प्रभु जी। अगला प्रमाण वेखियो, दूजे शब्द का स्टेप है पैराग्राफ सैकंड, जिस दे विच कहंदे जैसे अपने धने प्राणी मरन मांडे। धन बहुता होवे ना आदमी मर जाएगा पर धन नहीं छड़ेगा। अपने धन की रखवाली करता रहेगा, छड़ेगा नहीं कदे भी, फरमान करते कह रहे हैं।

थलेला सेकंड खंडा प्रथम साज के लास्ट वाली लाइन द सेकंड खंडा प्रथम साज के

सिंध पर्वत मेदनी चिड़ थम्मा गगन रहाया, सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा।